गुण तीन चार चार पाओ भगत करनी सदाए आओ भगत करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुरु बिट्टो बारे जित मिले कसम सवाला जिन करो बिस गणन दिया इन नेत्री जगत निहालिया कसम छोड़ दूजे लगे।

रात दिन जीना तको पहो कतिया बामन वटे ओ बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होए होए पुराना सुटिए पी फिर पाइए हो नानक तग न टूटई जी तक हुए जोर।

कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेड़ धोती का खाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पैर हो वे प्रवान मलेश ताले पूजे प्राण पाख्या का कुठा बकरा खाना चौकी ऊपर किसे न जाना देखे चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़िया मत पिटे वे मत पिटे एहो अन असाडा फिटे तन फिटे फेर करेन मन झूठे चुनी परेन कहो नानक सच त्याइए सुच होवे ता सच पाइए पौड़ी चे अंदर।

0: पहला जे महाका कर्म है पितरी दे अगे बस जानिए है पितरी चोर करे बढ़िया है हाथ दलाल कह मुफिए करे नानक अगे सो मिले जे खटे काले दे महला पहला
1: जो जोरू सरना मनी आवे बारो वार जूठे जूठा मुख वसे नितंत हुए खुआ सुचे ए ना आखिए वेंज पिंडा तोए सुचे सही नानका जिन मन वसया।

0: ला जेकर सूत के मने है सब ते सूत को है गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन के जिया बाज ना कोए पहला पार जो है जित हरिया सब कोए सूत के क्यों कर रखी है सूत फगर सोए नानक सूत के बिना उतरे ज्ञान उतारे तो ये महला पहला
1: मन का सूत लोभ है जेबा सूतक कूड़ अखी सूत के वेखना परत्रे परत रूप कन्नी सूत कन पहलाए तो बारी खाए नानक हंता आदमी बदे जम पुर जाए महला पहला
0: सब सूत का परम है।

एक नहीं आस ती दूजे लगे जाए नानक आस के कांडिया सादी रे समाए चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा होए आस के होना के जले के वरते सोई महला दूजा।

0: गन्ना करे कनेरियां खसम ना पाए सा
1: आप गवाह आप गवाए हैं सेवा करे ता किस पाए मान नानक जिसनो लगा दिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा
2: जो जी होए सो गवाए।

0: वस्तु अंदर वसलावे दूजी हो व्यापास साहेब सेती हुक्म न चले कहीं बड़े अरदास कूड़ कमाने कूड़ होवे नानक से पुगास महला दूजा
1: नाले आने दो पानी अंदर लीक जो तिस दाता ना ते अमला दूजा
0: होए आने करे।

क्षेत्रनाथ शौनी कर छत्रीपत गाई है विश्वनाथ विश्वंबर वेदनाथ बालाकार बाजीगर बाण धारी बंधन बरताई नवली।

मात पिता भाई सत बंध पन तिनका बाल है थोरा अनेक रंग माया के पेख किछ साथ न चाल पोरा ठाकुर

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमारी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमारे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दै मोह बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन कौ आज संघरिए। पूरन होए हमारी आसा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चौने चौने सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करी अहो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझियहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद्ध कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद पेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पीव न पावत बेदा। ताक कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पुज खान बहुर रच दीनी।
कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलिश करो रण काता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित होय मरे। पुरख जवन पग परे तिहारी, तिनके तुम संकट सब टारी। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा हुई ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्टि तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फासते ताहि उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा, दार

सवैया। पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह, हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहे ओ सब तो हे बखाने ओ। दोहरा

सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहा दै साहु जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहु सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहा दै साहु जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी तनासरी महला चौथा

हर हर कृपा करहौ प्रभ अपनी, मुख देवहु हर निमखाती, हर हर बूंद पै हर स्वामी, हम चात्रिक बिलल बिललाती, हर हर कृपा करहौ प्रभ अपनी, मुख देवहु हर निमखाती, हर बिन रह न सकौ एक राती, ज्यो बिन अमल अमली मर जाई है, त्यो हर बिन हम मर जाती, रहाओ

एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा संत कर चौथा। धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज सोडी सुल्तान सतगुरु जी।

0: जग
1: पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदे आखे लाख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सच सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्यान सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला
0: वड्डी वड्याई जा वड्डा नाम वड्डी वड्याई जा सच न्या वड्डी वड्याई जा नेत्र थम वड्डी वड्याई जा नेला वड्डी वड्याई जा साथा वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा पिया नानक कार ना कथनी जाए कीता करना सर्ब जाए महला दूजा हो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचार सिखना हुकुम।

मैदान मेरा तली खाल जे मेले दा मस्त खलाई है कूड़ा लाल छट गया हो एक मना लगते आई है फल ते वे पाई है जे वे ही कर कमाई है जे हो वे प्रभु लिखिया ता रोट के ना दी पाई मत थोड़ी सेव कमाई है मत थोड़ी

शब्दंग ब्राह्मण है, खत्री शब्दंग शूद्र शब्दंग, शूद्र शब्दंग प्राकृत है, सर्व शब्दंग एक शब्दंग जे को जाने फिर नानक ताका दास है, सोई निरंजन।

गुरु सुख पायो, कुत्ती जो प्यास, पीयूष पीवन की बंचत सिद्ध को बेद मिलायो। पूरन पो मन ठोर बसो, रस बासन सोजो दहन दस्तायो। गोबिंदवाल गोबिंद।

दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख हुआ सिफत खसामी नूर अरसहं कुरसहं तद डठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी सजन सच्चा पातशाह सिर साहंद जिस पास बैठिया सोहिया सब नांद सजन सच्चा पातशाह सिर साहंद जिस पास